रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: शनाया कपूर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द मूवी. पीपल से कि ये कोरियन मूवी की रीमेक है, मैंने देखी नहीं है, मुझे ओरिजिनल मूवी लगी और बहुत अच्छी लगी. सो इट्स अवेलेबल ऑन OTT एंड इट इज अ ग्रेट वॉच. इसी के साथ वी हैव गॉट बादशाह शार्वी यादव ऑन नंबर 36. Playing you the top 40 hits, keeping you company. I'm Mansi. This is the Big Bollywood Countdown.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 37.

0: ब्रांड न्यू एंट्री चार्ट्स में इस हफ्ते ऑन नंबर 35 वी've got गुरु रंधावा की आवाज साथ में गिल एंड गाना है फ्रॉम धमाल 4 मेकिंग अ लॉट ऑफ वेव्स ऑन सोशल मीडिया. इतनी सारी रील्स इस गाने पे मैंने ऑलरेडी रिक्रिएट लोगों को करते हुए देख लिया है. That it had to be a part of our charts. Right here playing you the top 40 biggest hits of the week. Mansi, this is the big Bollywood countdown. The high energy gana, upbeat party anthem of the year se kaha ja raha hai. From Dhamaal 4, jise bahut kamal reviews mil rahe. In fact, the movie is officially a commercial hit because worldwide 124 crores this movie ne kamali on the very first week of the release. And people... With families are thoroughly loving the movie, and of course the fans of the franchisee are embracing the nostalgia, the silly humor. In fact, agar aapne ye movie nahi dekhi hai, to I'm not going to give you any spoilers, but the movie officially ends with a teaser sequence that sets up the premise for a future Dhamaal 5. So there is going to be a Dhamaal 5 as well. Filhal yahan pe moving on number 34, Gen Z's ki tere naam is what I call this movie. Sayyara se
1: tum ho to sab acha hai.
0: जो हाल जेन ज़ीस का सैयारा देख के हुआ था, आई थिंक समहाउ मिलेनियल्स का वो हाल तेरे इश्क में को देखने के बाद हुआ था. अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी बट आई लव्ड इट बिकॉज इट इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रंजना एंड धनुष. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू दीज इंटेंस डीप हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ रोल्स. And Rahman saab ka music bhi kamaali hai. Is hafte on number 33 playing you the top 40 hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown of Mansi.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

0: 31. That was Janabe Ali from War 2 playing you the top 40 biggest hits of the week. This is the Big Bollywood Countdown. Hope you're enjoying your weekend and hope you're enjoying the top 40 biggest hits of the week. Do not forget to follow us on socials and vote. क्या आपके हिसाब से इस हफ्ते नंबर वन गाना कौन सा होगा? 106.2 Big FM it is, keeping you company. I'm Mansi. Moving on to number 30, विशाल भरद्वाज की ओ रोमियो, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आई. आई थिंक दैट इज विशाल भरद्वाज. कई बार लोगों को उनकी मूवीज समझ नहीं आती हैं, चाहे वो हैदर हो, मकबूल हो. जब दो तीन बार लोग देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि विशाल भरद्वाज करना क्या चाह रहे थे. शाहिद कपूर फैंटास्टिक इन द मूवी इज ऑलवेज. आई थिंक he's been with Vishal Bharadwaj for a while. Started off with Kameene, then Heather, and now O Romeo. So yeah, the movie is available on OTT, and I really like the movie. And एक चीज़ है that I look forward to in विशाल भरद्वाज की movie is रेखा जी का गाना. रेखा भरद्वाज की आवाज is literally magic. So, उन्हीं के आवाज में साथ में सुखविंदर सिंह. इसी के साथ we've got the woman who's ruling social media. Hashtag Jasmine Sandless is trending because she's giving hope to all the single girls that love will find us. And I hope when love finds us, it's just like how Jasmine found love. On number 29 this week on the Big Bollywood Countdown.
1: Number 30.

मिस्टर रहमान का मैजिक एंड आई मस्ट से शाश्वत सचदेव का भी मैजिक कमाल है. एवरी सिंगल सॉन्ग, चाहे वो धुरंधर वन से हो या पार्ट टू, इज सो वेल थॉट ऑफ एंड सो ब्यूटिफुली मेड. चाहे वो रिक्रिएटेड गाने हो, जस्ट लाइक दिस एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कवाली, किसी ने सुना नहीं था इसका ये वर्जन भी आएगा इस हफ्ते ऑन नंबर 15. Top 40 hits of the week. Stay right here. This is the Big Bollywood Countdown. I'm Mansi. Number 16.

0: वेलकम टू द जंगल से द बिगेस्ट ऑनसेंबल कास्ट एवर. अगर बॉलीवुड ने देखी है तो इसी मूवी में देखी है. इस हफ्ते ऑन नंबर 7, मूविंग ऑन टू नंबर 6. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. मैं हूं मानसी. नंबर 6 पे एक और गाना, धुरंधर. फर्स्ट पार्ट से वी गॉट I think 2026 so far has given us the best recreated songs. On number 5 we've got इसी के साथ अगेन recreated गाना धमाल से, धमाल 4 से in fact.
1: गुलाबी साड़ी अणि लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा.
0: एंड अ ब्रांड न्यू एंट्री सीधा नंबर 3 पर. इस गाने ने तबाही मचा रखी है सोशल मीडिया पे. टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स रिलीज हो रही है फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिले. अगस्त में ये मूवी रिलीज होगी. ब्यूटीफुल कास्ट, नयनतारा, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया एंड साथ में यश. बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस गाने के वीडियो को लेकर. आई वुड कॉल देम डबल स्टैंडर्ड्स. व्हाइल पीपल वर प्रेजिंग यश फॉर हिज लुक, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद कियारा अडवाणी जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड. गाइस, देयर एक्टर्स डूइंग द जॉब. ब्रिलियंट गाना इस हफ्ते सीधा नंबर 3 पर.
2: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. ऑल द म्यूजिक आई लव. द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Jill.
3: All my favorite music in one spot.
2: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

विशाल मिश्रा साथ में राजशेखर. दिस इज द हिंदी वर्जन ऑफ द गाना. देयर इज अ तेलुगु एंड अ कन्नड़ वर्जन आल्सो अवेलेबल. सीधा नंबर 3 पे एंट्री मारी है टॉक्सिक अ फेरी टेल फ्रॉम ग्रोन अप से. एंड फाइनली मूवी की रिलीज डेट भी आ चुकी है 26 अगस्त 2026 एंड इट्स गोना बी मिड वीक. द मूवी विल रिलीज ग्लोबली इन ऑफ कोर्स इट्स ओरिजिनल कन्नड़ एंड इंग्लिश वर्जन्स अलॉन्ग साइड डब्ड वर्जन्स इन हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम. द फाइनल अगस्त डेट वॉज सेट आफ्टर मल्टीपल डिलेज. अर्लियर इट वॉज प्लान टू रिलीज इन अप्रैल ऑफ 2025, फिर मार्च 2026, देन जून 2026 एंड विच वर ऑल शिफ्टेड ड्यू टू प्रोडक्शन एडजस्टमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट. Finally, the movie is all set to hit the theaters on the 26th of August. On number 3, that was Tabahi. Moving on to gana number 2, I think chipak gaye hain gana number 2 aur gana number 1. Again on number 2 this week, we have got Bombay Rockers back with Dhurandhar 2, still ruling the charts. And on number 1, so far has to be my favorite original gana 2026 ka. Cocktail 2 se is hafte bhi number 1 pe. At every single weekend, I keep you company here with the top 40 biggest hits of the week. In fact, aap bhi guess kar sakte hain kaun sa gana hona chahiye number 1 pe, kaun sa number 10 pe. All of that happens on our Instagram page. So definitely get in touch with us. So 106.2 Big FM. You can say hi to me, Mansi talking. Have a great, great, great weekend. We keep you company over the weekends as well. Stay right here. This is Big 106.2, the beat of Bollywood. Number 2.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
0: Countdown.
2: Here we go.
1: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Zara, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: बिल्कुल सही यार, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ज़ोरा के साथ हूँ आप ऑन द बिग रेकमेंड्स। हर संडे आपके साथ होती हूँ फ्रॉम 3 to 6 PM, ब्रिंगिंग यू द बेस्ट रेकमेंडेशंस कि कहाँ पे जाना और क्या एग्जैक्टली खाना होता है आपको। देखो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिठाइयाँ, क्योंकि मैंने कल ही खाई मिठाई और मतलब मेरा अभी दिल भरा नहीं है उस चीज़ से। सो आई फील लाइक आई डेफिनेटली शुड बी शेयरिंग माई टू सेंस विथ यू ऑन द बेस्ट प्लेसेस टू गेट इंडियन देसी मिठाई। हमारी जो देसी मिठाई है ये हर जगह पे अच्छी नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पे अच्छी मिलती है। एंड एज समवन हु हैज़ अ स्वीट टूथ एंड नोज टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड मिठाई, आई कैन वाउच फॉर इट कि मैं जो आपको रिकमेंडेशंस दूंगी ना वो टॉप नॉच के ही होंगे। सो दिस आर वी गोना गेट इनटू दैट। सबसे बढ़िया देसी मिठाई कहाँ पे मिलती है, ऑल दैट एंड मोर विद सम ब्यूटीफुल म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू राइट हियर ऑन द बिग रेकमेंड्स विद मी ज़ोरा।

दिलजीत सिंह की आवाज, गाने का नाम सजदे, राइट हियर ऑन द बिग रेकमेंड्स विद मी ज़ोहरा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मिठाइयों की, क्योंकि दो दिन पहले जो मिठाई खाई, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। क्या मैंने खाया इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट देसी मिठाई। ओके, देसी मिठाई यहाँ पे हर जगह अच्छी नहीं मिलती, बहुत कम जगह हैं, एंड सम ऑफ देम आर एन ओजी फॉर अ रीजन, है ना। उनको ओजी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वो है बड़े खिलाड़ी, तो उनके साथ पंगे नहीं लेते। एंड ऐसे एक ओजी का मैं नाम लेना चाहती हूँ, विच इज़ बीकानेर वाला। आई फील लाइक उनकी मिठाई हमेशा से टॉप नॉच रही है, बट माई पर्सनल फेवरेट इज़ देयर रसमलाई। आई फील लाइक नॉट एवरी वन कैन मेक गुड रसमलाई। इनफैक्ट कहीं जगहों पर यू नो वाइट रसमलाई सर्व करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि दैट इज़ नॉट रसमलाई। रसमलाई में प्रॉपर केसर का वो फ्लेवर होना चाहिए, मलाई भी अच्छे से पकनी चाहिए, उसका रस भी प्रॉपर होना चाहिए, कि ना ज़्यादा मीठा हो ना यू नो एकदम ही फीका हो। सो टू हैव दैट काइंड ऑफ अ बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई फील लाइक बीकानेर वाला ऑलवेज एसेस इट। सो दे आर द बेस्ट, आई फील, वेदर इट्स रसमलाई और वेदर इट्स द पेड़ाज और वेदर इट्स एनीथिंग, आई थिंक ओवरऑल मिठाइयाँ बीकानेर वाला की मैं नंबर वन पे डालना चाहूंगी शायद बीकानेर वाला को। टू एंड थ्री स्पॉट्स, इसके बारे में भी बात करेंगे इन जस्ट अ बिट, लेकिन पहले आप मुझे बताओ देसी मिठाइयों में विच इज योर फेवरेट देसी मिठाई, क्योंकि ये तो इतना बड़ा ब्रैकेट है, राइट? आर यू अ गाजर का हलवा पर्सन? आर यू अ रसमलाई पर्सन? आर यू गुलाब जामुन पर्सन? व्हाट इज योर फेवरेट देसी मिठाई, मुझे जल्दी जल्दी से डीएम करके बताओ ऑन आर इंस्टाग्राम, दैट इज 106.2 बिग एफएम। माय नेम इज ज़ोहरा, आई विल बी कीपिंग यू कंपनी शाम 6 बजे तक।

यहाँ पे माहिया की तो बात नहीं होगी क्योंकि माइंड ब्लोइंग तो ये सारी मिठाइयां हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ ऑन द बिग रेकमेंड्स टुडे. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोहरा. एंड फिलहाल आज हम शो पे बात कर रहे हैं देसी मिठाइयों की, सबसे बढ़िया वाली यहाँ पे कहाँ मिलती है. ऑलरेडी मैंने बात कर ली है, बीकानेर वाला आई थिंक इज माई नंबर वन स्पॉट फॉर मी. डेफिनेटली देसी मिठाई वहाँ पे सबसे अच्छी मिलती है. लेकिन मैंने आपसे पूछा फेवरेट आपकी देसी मिठाई कौन सी है, तो नाउ आई फील इस पर बहुत सारे लोग डिबेट करने लग जाते हैं. बट ईच टू देमसेल्व्स, राइट, मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन होता है. मेरा अलग ओपिनियन है, आई फील नंबर वन पे देसी मिठाइयों में आई वुड पुट रसमलाई. Hands down, it is the best mithai. It is the perfect balance between the texture, between taste, between looks, presentation. Sab kuch, I feel, rasmalai number one pe deserve karti hai wo spot. Number two pe, I think, gajar ka halwa, I would put. Jab koi achha gajar ka halwa bana paata hai na, to I think it deserves to be appreciated. It's that much effort and that much, good work. Uske alawa, number three, I'm really, really confused. I need you to help me out. Kaun si aur aisi mithai hai that deserves to be on a number three spot? Please don't tell me gulab jamun. Please don't tell me rasgulla because nahin, wo top mein to nahin aate. Tell me something a little more interesting. Jalebi, not everyone can make jalebi right, hai na? So I'm not sure if I want to give the third spot to jalebi also. What according to you deserves to be in the top three, hai na? Desi mithaiyon mein. Ki ye teen mithaiyan desi mein best hai. Agar koi aisa hai mithai ka option aapke dimaag mein, to mujhe batao. You can DM us on our Instagram. That is 106.2 FM. Filhal hum baat kar rahe hain desi mithaiyon ki on the big recommends this week. I'm going to be sharing my top recommendations of where you can get the best desi mithai.

The OG Chinnery Chinnery. कभी कभी originals को मतलब आप टक्कर नहीं दे सकते यार. Original is the bop for a reason and I feel like मिठाइयों में भी ऐसा ही है. कुछ OGs है जिनसे मतलब आप टक्कर नहीं ले सकते. They are the kings of what they do. They are masters of the art and ऐसे ही कुछ masters की मैं बात कर रही हूँ when it comes to desi mithai. Because on the Vic recommends this week, we're talking about the top places in the UAE where you can get the best desi mithai. एक तो recommendation मैं share कर चुकी हूँ आपके साथ. दूसरा शेयर करूंगी इस दूसरे घंटे में. एंड यू कैन देन टेल मी वेदर नॉट यू अग्री विथ माय चॉइसेस, विथ माय प्रेफरेंसेस, एंड इफ नॉट गुड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ्स. एंड देन बताना कि यार ज़ोरा ने सही बोला था कि नहीं बोला था. यू कैन डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम व्हिच इज 106.2 बिग एफएम. माय नेम इज ज़ोरा विद यू अंटिल 6.

0: That's it.
1: But I definitely karta.
2: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Zara, only on Big 106.2.
3: The beat of Bollywood.
4: Yes, that's right. This is The Big Recommends with me, Zora, all the way until 6 p.m. हम बात कर रहे हैं इस हफ्ते देसी मिठाइयों की, क्योंकि मैंने जो देसी मिठाई अभी अभी खाई है वो इसी जगह से खाई है जिसकी बात मैं इस घंटे करने वाली हूँ. Which this places and मैंने कौन सी मिठाई खाई थी, आई विल शेयर ऑल ऑफ दोज डिटेल्स इन जस्ट अ बिट. बट इफ यू आर अ फैन, यू गॉट टू स्टिक अराउंड यार, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने आपको रेकमेंड किया है ना कि कहीं पर जाओ, इट इज़ फॉर अ रीजन. ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड्स एंड जस्ट गो, बिकॉज ये जगह एकदम टॉप है. तो अगर देसी मिठाई के फैन हो, आपको पता चल जाएगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ इस घंटे. आई कीप यू कंपनी ऑल द वे अंटिल 6 विद ब्रिलियंट म्यूजिक ऑल्सो प्लेइंग ऑल दीज 3 आवर्स.

बद्री की दुल्हनिया ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता किसी को बद्री की दुल्हनिया में इंटरेस्ट होगी। जब इतनी अच्छी मिठाई देख लेंगे तो सिर्फ मिठाई ले जाने का दिल करेगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ज़ोहरा के साथ हूं अपॉन द बिग रेकमेंड्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट देसी मिठाई के जो प्लेसेस है इन द यूएई, वो कहाँ पे है और आपको कहाँ पे जाना होगा सबसे बढ़िया मिठाई खाने के लिए। एक तो रिकमेंडेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिया था। इस घंटे आई वॉन्ट टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू दिस प्लेस कॉल्ड गंगूर, गंगूर स्वीट्स। आई थिंक करामा मनखूल एरिया में है, लैम्सी प्लाजा जो था उसके पीछे बिल्कुल। एंड आई थिंक यहाँ पे मैंने सबसे बेस्ट मिठाई खाई है। यहाँ पे देयर इज दिस थिंग कॉल्ड आई थिंक मैंगो रबड़ी, आई थिंक इट इज, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अ रबड़ी बट इट इज मैंगो। एक छोटे से कप में देते हैं। दैट इज द बेस्ट देसी मिठाई दैट आई हैव हैड इन रीसेंट टाइम्स। आई हैव बीन सो ऑब्सेस्ड विद इट कि इवन इफ आई एम नॉट गोइंग दैट साइड ऑफ टाउन, आई विल मेक श्योर टू टेक अ डिटूर एंड गो देयर आफ्टर माई मील्स ओवर द वीकेंड्स स्पेशली, बिकॉज मुझे मिठाई सिर्फ और सिर्फ वहां की खानी होती है और सिर्फ वो मैंगो मिठाई खानी होती है। इट इज सो गुड, इट्स अ 10 on 10 एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट लेटली। सो इफ यू आर समवन हु लव्स मैंगो एंड डिजर्ट स्पेशली तो आपको तो डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो गंगूर की मिठाई आई थिंक बेस्ट है। बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पे है जो आपको यूनिक भी लगेंगी, जिसका फ्लेवर भी आपको एकदम बढ़िया लगेगा एंड आई थिंक इट्स एकदम मेरे लिए कट टू कट है यार, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन में ऐसे चूज नहीं कर सकती। आई वुड पुट गंगूर ऑल्सो इन माई टॉप 300% बिकॉज सारी मिठाइयाँ यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मेक श्योर गो चेक इट आउट, इट इज अमेजिंग। उसके अलावा नाउ आई वॉन्ट गेट टू द कोल्डर मिठाइयाँ, इसके बारे में मैं बात करूंगी बट इन जस्ट बिट, ठीक है? पर फिलहाल आप ये थोड़ा सोचो, जाके मेन्यू वगैरह चेक करो कि क्या खा सकते हो एंड आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर फ्यू सॉन्ग्स।

एक ऑन ऑन द लीड विद विशाल ददलानी, क्रिमिनल रावण से आपने सुना ऑन द वेग रेकमेंड्स. मैं होती हूँ आपके साथ शाम 6 बजे तक एवरी संडे विद द बेस्ट रेकमेंडेशंस ऑफ वेयर टू गो, व्हाट टू ईट, व्हाट टू डू. वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इस हफ्ते हम स्पेशली बात कर रहे हैं देसी मिठाइयों की, क्योंकि मैंने हाल ही में जो देसी मिठाई खाई, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, एंड इफ आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, आई मेक श्योर यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. लेकिन यार आई वॉज जस्ट थिंकिंग, तो मैंने आपको बताया ना मेरी टॉप 3 कौन सी है फेवरेट देसी मिठाई. एक पे जैसे मैंने कहा नंबर 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी रसमलाई, नंबर 2 पे मैंने कहा गाजर का हलवा, नंबर 3 आई वॉज थिंकिंग, नाउ देर आर 2 थिंग्स दैट हैव कम टू माई माइंड दैट आई फील लाइक आर वेरी वेरी नाइस. एक तो है आई थिंक केसर पेड़ा, नॉट द रेगुलर पेड़ा, नॉट द रेगुलर बर्फीज, केसर पेड़ा. ये केसर पेड़ा हर कोई अच्छे नहीं बना पाता, जहाँ कहीं पर अच्छा मिल गया ना आपको, इट हैज़ टू बी एकदम ही सॉफ्ट, एकदम ही क्रीमी टेक्स्चर उसका होना चाहिए, एंड इट हैज़ टू हैव दैट प्रॉपर येलो कलर ऑन इट विद द लिटिल पिस्ता ऑन टॉप ऑफ इट. आई थिंक वो पूरा प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत मैटर करता है. सो आई वुड ईदर से केसर पेड़ा और आई वुड से नाउ डिफरेंट पीपल कॉल इट डिफरेंट नेम्स, दिस ब्राउन पेड़ा विच इज़ कोटेड विद ड्राई शुगर, आई थिंक उसको आई डोंट नो मुंबई साइड या महाराष्ट्र साइड में कहते हैं धारवाड़ पेड़ा, आई एम नॉट श्योर आपकी साइड में मतलब क्या कहते हैं उस चीज़ को, बट आई यू ट्राइंग टू आई मीन आई यू एबल टू पिक्चर वॉट पेड़ा आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स ब्राउन इन कलर एंड इट हैज़ ड्राइड शुगर ऑन इट, लाइक पाउडर्ड शुगर ऑन इट. आई डोंट नो वॉट यू कॉल इट ऑन योर साइड, बट हाँ इसे इसको आई थिंक आई वुड पुट इन माई टॉप 3 बिकॉज आई लव इट. मिठाई आपको टॉप में तब डालनी चाहिए जब ईदर यू लव इट टू मच और दूसरा यू कांट स्टॉप ईटिंग इट. मेरे लिए दो पेड़े वैसे हैं, आई कांट स्टॉप ईटिंग, एक बार खाने लग जाऊँ तो खाती रहती हूँ मैं, पूरे पूरे डब्बे खत्म कर देती हूँ. बट वेट, विच आर योर टॉप 3 फेवरेट देसी मिठाई, ये आप भी मुझे सोच के बताओ ऑन आर इंस्टाग्राम दैट्स 106.2 FM. अगले घंटे हम बात करेंगे ऐसी मिठाई की जो आई थिंक वो इट कम्स ऑन अ मोर कूलर साइड, नॉट द रेगुलर देसी मिठाई, इट कम्स ऑन अ मोर कूलर साइड. वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट आवर.

पूजा घोषाल की आवाज धूमताना ऑन द बिग रेकमेंड्स विद मी ज़ोहरा। फिलहाल इस लास्ट आवर में हम बात कर रहे हैं अबाउट वन लास्ट रेकमेंडेशन दैट आईड लाइक टू मेक अबाउट वेयर यू गेट द बेस्ट देसी मिठाई। ठीक है, हमने पेड़ों की बात कर दी, हमने यू नो रसमलाई की बात करी, हमने बहुत सारी मिठाइयों की बात करी है, लेकिन दिस वन स्पेशल मेंशन दैट आई वांट टू गिव टू दिस देसी मिठाई विच इज कुल्फी। कुल्फी जो हमारे मतलब दिल में जो प्लेस इसकी है वो आई डोंट थिंक कोई नॉर्मल आइसक्रीम रिप्लेस कर सकता है इस चीज को। सो आई फील कुल्फी का मेंशन तो करना जरूरी है एंड डिजर्ट्स में अपनी देसी मिठाइयों में कुल्फी तो आती ही है। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वन प्लेस जहां की कुल्फी मुझे सबसे ज्यादा इन रिसेंट टाइम्स पसंद आई है, आई हैव गॉट टू मेंशन शहंशाह कुल्फी। मतलब बहुत सारी जगहों से मैंने कुल्फी खाई है, टेस्ट की है, बट शहंशाह कुल्फी आई थिंक गोज आउट ऑफ देयर वे यू नो टू एक्सप्लोर, टू एक्सपेरिमेंट, टू कम अप विद डिफरेंट यू नो ideas to make different flavors, and I think that's what excites me the most because regular kulfi to hum khate hi hai, which is a classic. Yahan mein regular jo maine khai hai malai kulfi, mango kulfi, bahut hi badhiya rahi hai, but I love the fact that they explore so much with flavors. Maine yahan pe ek chai flavor ki kulfi khai thi and it was so good. Usually aise lagta hai ki jab ye utpatanga flavor sun lo na ki acha nahi hoga yaar, but yahan pe jo maine try kiya, everything is you know for sure tried and tested because it was so good and I fell in love with it. So kulfi ki agar main baat karu, best kulfi yahi pe milti hai and desi mithaiyon mein matlab kulfi ka naam hona I think definitely zaruri hai. So if you haven't tried it out then I think you should definitely give it a shot. Shehenshah kulfi, I think the best kulfi in town. Filhal this is the big recommends. Achhe achhe gaane to yahan pe chalte hi rahenge apart from the achhe achhe recommendations that I have make all the way until 6 p.m.

आई थिंक यार शर्मिली खुलगड़े इज अ वेरी वेरी अंडर रेटेड सिंगर. मतलब जो इनकी वर्सिटैलिटी है, जो इनका रेंज है, नॉट मेनी पीपल टॉक अबाउट इट यार. इफ शी कैन सिंग समथिंग लाइक एन अग्गा बाई विच हैज दिस यू नो सेंशुअलिटी इन द सॉन्ग, एंड देन शी कैन इमीडिएटली सिंग मैं परेशान परेशान, ओ माई गॉड वाओ. आई थिंक शी इज वेरी सुनिधि चौहान कोडेड. आई वुड लाइक टू से दैट. आई डोंट नो इफ यू हैव द सेम ओपिनियन, बट मुझे लगता है अनपॉपुलर ओपिनियन मेरा यही है कि शर्मिली इज वेरी वेरी सुनिधि चौहान. Anyway, this is the big recommends. You're with me, Zohra. I keep you company har Sunday 3 baje se lekar sham 6 baje tak, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: Okay, now I would like to introduce you to my very good friend, an amazing guy, and a super cool singer, Siddharth Mahadevan, on stage, please.
1: Thank you, thank you. Hello.
2: आप सुन रहे हैं बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: नमस्ते.
4: ओला.
3: अस्सलाम वालेकुम.
5: बोंजूर.
6: नी हाओ.
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया. यस, इवन इफ यू टाइप इन जेन ज़ी लिंगो. इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae. सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.